0: है कि मौसमी और ऑपरेशनल हालात के पेश नज़र हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर सपोर्ट और दस्तियाब रेस्क्यू वसायल जल्द अज जल्द मुतहर्रक किए जाएँ।
1: इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंग के खात्मे के लिए मुआहदा तय पा गया है। हमास के सीनियर अहदेदारों ने कहा है मुआहदे में हमास के लिए हथियार हवाले करने और इसराइल फौजों के खत्ते से बतदरीज इनखला की दफात शामिल है। ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से पेशरफ के ऐलान के बाद सामने आए हैं। हमास के एक अहलकार ने कहा ग्रुप अब सालसों और ट्रंप के अमन कौंसल से ताल्लुक रखता है कि इसराइल मुआहदे की शरायत पर अमल दरामद करे। मुजाकरातकार गाजी हमाद ने कहा हमास ने गजा के लोगों को मजीद कत्लेआम बेघर होने से बचाने के लिए रायतें दी हैं।
0: ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि कुवैत के अलजाबिर हवाई अड्डे में मौजूद अमरीकी फौज के जंगी तैयारों का हैंगर, सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम और गोला बारूद के गोदामों को कामिकाज़े किस्म के ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने कुवैत में वाक़ अमरीकी अड्डे पर ईरान की फौज की जानब से किए गए हमले के बारे में जारी करदा बयान नशर किया। बयान में कहा गया है कि हमला अमरीकी फौज के कल सुबह कशम जजीरे में एक शहरी के घर को निशाना बनाने के जवाब में किया गया है। कुवैत के अहमद अल जाबिर हवाई अड्डे पर किए गए इस हमले में अमरीकी फौज के जंगी साजो सामान को हदफ बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि अहमद अल जाबिर अड्डा अमरीकी फिजाई और निगरानी ऑपरेशंस में एक अहम किरदार अदा करता है और अमरीकी फौज के लिए एक हयाती अहमियत का फिजाई इमदादी मरकज समझा जाता है।
1: इसराइल जेलों में फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ तिब्बी हकूक के खिलाफ वर्जियां मुतवातर से जारी हैं। फलस्तीनी अंजुमन बराए असीरान ने खबरदार किया है कि इसराइल जेलों में बंद कैदियों की सेहत की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अंजुमन की जान से जारी करदा बयान में बताया गया है फरवरी से सिर हिरासत 15 साल नौजवान मोहम्मद हामिद का ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ है, जबकि हिरासत के दौरान जख्मी होने वाले 30 साल कैदी मलक हानी जबरेल का ऑपरेशन के बाद दायां पांव काटना पड़ा। बयान के मुताबिक दोनों सीरान की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, उनके अहले खाना को इनके बारे में मालूम हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अंजुमन इन हालात की तमाम जिम्मेदारी इसराइल पर आयद करते हुए कौमती दाव आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल जेलों में तकरीबन 9,400 फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं, जिनमें 350 से ज्यादा बच्चे हैं।
0: रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर जुमे की शब हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया जिनमें 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रे वोचारोव ने कहा कि जुनूबी वोल्गोग्राद में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले ने ईंधन और तवानाई के एक मरकज़ और शहर के ज़ीरजिंस्की जिला में गोदामों में आग लगा दी, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और 5 अफराद जख्मी हुए। वोचारोव ने रूस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर लिखा है कि हंगामी इमदादी टीमें इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रूस के ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज ने हमले की तस्दीक की और कहा कि वोल्गोग्राद में उसके एक लॉजिस्टिक सेंटर में आग लगी हुई है। कंपनी ने टेलीग्राम पर कहा कि इब्तदाई इतलात में जानी नुकसान की रिपोर्टें मौजूद नहीं हैं और बताया कि लॉजिस्टिक ऑपरेशन को दीगर तनसीबात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि उसने पूरे मुल्क इलहाक शुदा क्रीमिया और बहिरे असवद और बहिरे एजोफ के बानियों में आज शब 371 यूक्रेनी ड्रोन्स को रोका और तबाह किया। यूक्रेन में नेप्रो पेत्रोवस्क इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा अलेक्जेंडर हांजा के मुताबिक निकोपोल जिला में एक रूसी हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। यूक्रेनी फिजाई ने दावा किया कि उसने शुमाली, जनूबी और मशरकी यूक्रेन के ऊपर 195 रूसी ड्रोन्स मार गिराए हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: भारतीय रियासत महाराष्ट्र में एक मार्ग के जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने के नतीजे में इब्तदाई इतलात के मुताबिक 9 अफराद हलाक हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने बताया, रियासत के जिला थाने में एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस वाकये में इब्तदाई तयन के मुताबिक 9 लाशें बरामद हुई हैं। हुकाम ने कहा, मलबे तले दीगर लोगों के दबे होने का खदशा भी है। हुकाम ने बताया, इस हादसे के हवाले से इमदादी कार्रवाई का सिलसिला जारी है।
2: जापानी हुकाम का कहना है कि जनूब मगरबी जापान में आने वाले हौलनाक जिलजिले से हलाकतों की तादाद 35 तक बढ़ गई है, जबकि रेस्क्यू टीमें सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में मलबे तले जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए हैं। हुकाम ने कहा कि अभी यह तस्दीक नहीं हो सकी कि तमाम अमवात बराह रास्त जिलजिले की वजह से हुई हैं या नहीं, और खदशा जाहिर किया है कि तलाश जारी रहने से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। यह जिलजिला मंगल को जापान के जनूबी मरकजी जजीरे क्यूशू में आया था, जिसने कोमामोतो प्रीफेक्चर में वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। जलजले से एक शॉपिंग मॉल में धमाका हुआ, एक फैक्ट्री की चिमनी गिरा दी और घर मुसमार कर दिए।